कौन से फूल आ रहा है कोई? और आई फाइंड आउट अबाउट योर नेट बैक इन द कार्ड.